तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार च ऐसा चल जाना एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है उन्हूं जाके बेनती करा तू ये कर दे इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि

महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर कम आउण दी एक दूजे दा कम करन दी सांझ पाउणी है तू वाहगुरू नाल पा के देख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है, ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता, जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है, और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में, और जिसले साडे हाथ जुड़ जाण मस्तक न्यों जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हाथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हाथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, यह हाथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हाथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन, आप करता पुरख हो, इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, यह हाथ बज गए, यह हाथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हाथ बन के सत्कार हुंदा ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना होवे, आदर करना होवे, तां भी हाथ बनने, लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हाथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने आ, इहदे पिछे भी दो गोज बाद ने, एक तां इह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आ, मत्था टेकने आ पातशाह इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसीं, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसीं बनाओ ते करो भी तुसीं, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो, मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हो, अर्ज कर रहा होवां, मैं केवल अरदास जुड़िया होवां, एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबां ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहा तो ये वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै, अपनी भगती नाल मेरी लिव एकाग्र करने की समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हाथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा, प्रभु का होर कोई काम साथों थुड़िया नहीं पिया, वाहिगुरू का कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा, ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा, पसीने पूंजदा, सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा है, लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा, वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी, कार्ज आया रासे नानक कहो गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे, जदों सतगुरु कार्ज करना आ जावे उसले कार्जा च शोभा हुंदी, ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा, ये गल वखरी है कि अरदास करने वाला बंदा कार्य की संपूर्णता तो बाद यह नहीं कहता मैं कम नबेड़ दे, बल्कि वह तो यह कहता है।

करनी है, अरदास ही करनी है, तो किसी छोटे मोटे अगे कानू करनी है। सोई त्याई जीअड़े सिर शाह पातशाह, जो सब तो पातशाह तो शहन शाह तो वड्डा है, शाह दे सिर ते जो पातशाह है ओदा ध्यान कर, ओदी ओट तक, ओदा आसरा तक,

हूँ बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हों पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा, विश्वास घाती आकृत घन

लो न आवई, जैसो मन लागै पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुर सेवा ना लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में ना ठहरावई।

जैसे रैन सैन समय सब लोग में संजोग पो चकवी बेयोग सोग पागहीन जानी है। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग उल्लू अंध कंध प्रचीन उन्मानिए सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है त्रिखावंत चात्रक रहत बकुबानिए तैसे मिल साध संग

फोपाहीन पागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूते हस्त न पावरी।

तो सोना दानी ना मोसो भिखारी मोसो ना दीन दयाल न तोसर मोसो अज्ञान न तोसो बिचारी मोसो न पतित न पावन तोसर

आपने बड़े प्यार दे नाल जिथे श्रवण कीता है रचना पवित्र भी कीती है नाल मिल के कीर्तन कीता है। ए कबीर जी ने ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था ए शब्द विच दसी है और आखिर विच दसिया भाई ए अवस्था किन्हां नूं प्राप्त होंदी है जिन्हां नूं गुरु की कृपा का सदका नाम की दात मिल जाए ते नाम की कमाई कीतिया ए ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था प्राप्त होंदी है। अल्लो अलख ना जाई लख्या गुड़ दीना मीठा नाम रूपी गुड़ जदों गुरु ने मैनू बख्शिया ता फिर मैनू कोई दूसरा पासिया ही नहीं ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनियारी। सो ए दात किन्हां नूं प्राप्त होंदी है मैं अगला शब्द जो तुहाडी भेटा कर रहा ओ भाई साहब भाई गुरदास जी दी वार विचो है और भाई साहब गुरदास जी ने गुरसिख दे छे नियम दसे हन इस वार विच भाई गुरु का सिख कौन अखवाउण दे लायक है जिदे अंदर ए छे गुण हन ओ गुरु का सिख है उसने आपा परमेश्वर प्रण कर दिता है समझो। तो भाई साहब बड़े प्यार नाल ए नियम दस रहे हन और ऐसे गुरसिख तो आप भी बलिहार और सदके हो रहे हैं। कहिंदे हन जिदे अंदर आ नियम वसदे हन बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बना के ऐसे गुरसिखा नूं पहना दियो जिन्हां दे कदम सेवा सिमरन परोपकार लई उठदे हन। सो आओ बड़ा साधारण जिहा शब्द है पर बड़ा अमोलक खजाना है शब्द दे विच सारिआं ने मिल के पढ़ना है। हों तिस घोल घुमाया गुर मत हृदय गरीबी आवे। गरीबी तो भाव है निम्रता। गुरु नानक दे दर ते निम्रता नूं गरीबी करके आख्या गया। गरीबी नूं किसे कंगाली जां भुखमरी नहीं समझना। गुरु नानक दे दर ते बाणी दे विच निम्रता नूं गरीबी आख्या गया। कर किरपा जिसके हिरदे गरीबी वसावे नानक इहां मुकत आगे सुख पावे। सो आओ सारे प्यार दे नाल भाई साहब ने जो एक गुरसिखी दे गुरमत दे छे नियम दसे हन बड़े प्यार दे नाल श्रवण करिए।

शुद्ध जब ते हम तरी बचन गुरुदेह हमारे पूत ए है प्राण तोहे प्राण जब लग घट थारे निज नारी के संग नेहो।

एका नारी जति है, एका नारी जति है, पर नारी ती पहन वखाने, वेख पराइयां चंगियां, मामा पैना तियां जाने। ये है गुरशी पहला नियम, निम्रता धारण करनी, सेवा सिमरन परपकार कर दिया होया भी किसी गल दा मन विच हंकार ना आवे। दूसरा नियम, अपने जीवन नू पवित्र रखना। साहिब कलगीधर पातशाह दा वचन आपने श्रवण कीता है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हन, कहिंदे हन जदों मेरे गुरुदेव पिता तिलक और जंजू दे राखे लई हिंद दा धर्म बचाउन लई अपना बलिदान देन वास्ते दिल्ली जान लगे, तां मेरे पासों एक वचन लिया, शुद्ध जब ते हम तरी वचन गुरुदेह हमारे, पूत ए है प्रण तोहे। आख्या मेरे बच्चे एक मैनू प्रण दे, ते ओ प्राण तेरा प्राणा दे नाल निब जावे, श्वासा दे नाल निब जावे। ए प्राण कलगीधर पातशाह ने फिर गुरसिखा को लिया कि मेरा सिख कौन है जिसका जीवन ऐसा पवित्र है। गुरुदेव पिता कहिंदे हन के पूत ए है प्राण तोहे, प्राण जब लग घट थारे, निज नारी के संग नेहो तुम नित बढ़ियो, पर नारी की सेज भूल छुपने होना जी। अपने जीवन नू पवित्र रखना, ए गुरसिखी दा दूसरा नियम है। आओ अगले नियम श्रवण करो। प्यार देना हो तिस

0: जो था नियम गुरु का सिख ना किसे दी निंदा करदा है ना सुनदा है। किसे दी निंदा करनी इस तरह है कि उदे अवगुणा दा पार अपने सिर ते लै लां। भाव किसे ने कूड़े दी टोकरी चकी होवे ते खाम खा उदे सिर तो चुक के अपने सिर ते रख लै। ऐसा है किसे दी निंदा करनी जां किसे दी निंदा सुननी। तो हजूर बाणी विच बख्शिश करते हन कि निंदा भली किसे की नहीं, पर कौन करदे हन मन मुख मुगध कर मुंह काले तिन निंदका नरके कोर पम। इसलिए गुरु का सिख गुरसिखी गुरसिख सुन अंदरों सियाणा बारों फोला। गुरु का सिख बारों फोला है अंदरों सियाणा है। किस लई किसे नू नुकसान पहुंचान लई नहीं। अंदरों सियाणा इसलिए है भई जिथे ता गुरु की बाणी दी विचार हो रही है कन दे के सुनदा मन दे के सुनदा ते जदों निंदिया चुगली शुरू हो जाती है कहिंदा मैं कुछ सुनाई नहीं देंदा मैं चलदा हां। सात संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: यह गुरसिखी दा चौथा नियम। पहला नियम निम्रता, दूसरा अपने जीवन नू पवित्र रखना, तीसरा पर दरबे नू हथ ना लावे, चौथा नियम गुरु का सिख ना किसे दी निंदा करदा है ना सुनदा है। ऐसे गुरु के सिख लई भाई साहब कहंदे हन बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बनवा के ऐसे गुरसिख नू पहना दे गुरमत तेरी दे।

पंजवा नियम कि गुरु की मोर लगवा के अमृत छक के गुरु वाले बन के ते फिर जो पंज प्यारे सुमति बख्शन ओदे मुताबिक अपने जीवन नु टालना ए है सतगुर का उपदेश कमावे रहनी रहे सारे जपो रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा आख्या मैं उदा दास हां मैं उसका चाकर हां जो रहनी बहनी विच पूरा है सत संगत बोलो श्री वाहिगुरु भाई साहब ऐसे गुरमुख तो बलिहार जा रहे।

अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा दया क्षमा तन प्रीत शील संतोख सदा निर्बाहे वो होए गोत्रे गुण अतीत थोड़ा समय थोड़ा ही खावे गुर सिख जोगी जाग दे गुर सिख जोगी जाग दे माया अंदर करण उदासी

Goodbye.

जिंदगी दी तमाम गरजा दे कारण लोड़ा दे कारण एक दूसरे तो एक्सपेक्टेशन होंदिया हैं उन्हां दी बिना उते कदे सानू जो है खुशी नसीब होंदी है कदे गमी मिलती है कदे सानू खिड़ाओ मिलता है कदे सानू डिसअपॉइंटमेंट्स जो वो मिलती है सो अजिहे एक्सपीरियंस ते हर इंसान अपनी जिंदगी दे विच रोजाना जो है एक्सपीरियंस करते हैं दे आर मोर लैस इक्वल एंड सेम रेपिटिशन लेकिन इस शब्द दे विच भगत कबीर जी ने जो मनुखी जिंदगी दे विच कीते हुए एक खास अनुभव दा आत्मक अवस्था दे किसे खास एक ऐसे एक्सपीरियंस दा जो एक्सप्रेशन जो साडे सामने पेश कीता है इस शब्द दे विच वो बहुत ही रेयर है वो बहुत ही कम है अते विरलियां नूं अजिहा थ्रिलिंग अजिहा जॉयफुल अजिहा अनुभव जो है वो हासिल हुंदा है इस शब्द दे विच कबीर जी एक दृष्टांत साडे सामने रखते हैं पहला मैं वो दृष्टांत तुहाडे सामने रखा ताकि उस गल नूं मैं जो एलैबोरेट करना चाहना हाँ वो मैं कर सकां शब्द आप फिर प्यार नाल सुनो कहते हैं पंथ निहारे कामनी कामनी कहते हैं एक स्त्री पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा उरना पिजे पगना किसे हर दर्शन की आशा एक मेटाफर है एक दृष्टांत है एक उन्होंने मिसाल दिती है साडे सामने जिस तरह कहंदे हन एक पत्नी जिसका पति परदेश दे विच चले गया होवे बहुत लंबे समय दे वास्ते अते उसकी जदों वो जुदाईगी महसूस करती है उस जुदाईगी दे विच की करती है पंथ निहारे उसका रस्ता देखती है उसकी राह तकदी उसका इंतजार करती है पंथ निहारे निहारे का मतलब देखती है पंथ निहारे कामनी वो औरत लोचन भरी कई दफा उस विछोड़े दी जो दर्द है उस करके उस दे लोचन भरी उस दी अखां जो हैं लोचन हैं वो भी पानी दे नाल भर जांदी हैं अंसुआं दे नाल भर जांदी हैं ले उसासा अते अपने अंदर ही अंदर उस जो खला है जिंदगी जो कमी है उस दे कारण ले उसासा वो होके भी लेंदी है अगे चलते हैं उड़ना पिजे उस दे हिरदे नूं उस दे दिल नूं टिकाओ नहीं आता पता नहीं किहड़े युग दियां इह गल्लां भगत कबीर जी ने साडे सामने पेश कीतियां हन एक दृष्टांत है अज दी जिंदगी च पत्नियां ऐसा महसूस करदियां हन जां नहीं इह मैनूं नहीं पता लेकिन भगत कबीर जी ने इह दृष्टांत इह प्रमाण साडे सामने किसे युग दा बख्शिया है कहिंदे हन उर ना भिज्जे उस दा हिरदा जो है उह खलोंदा नहीं है और कहते हैं हिरदे दिल नू उस दिन टिकाओ नहीं आता तसल्ली नहीं आती बेचैनी है एक उथल पुथल है और ना पिजे पग ना किसे अते उस दे पैर अगा चलते नहीं हैं भाव कोई सत्या नहीं अंदर कुछ करन दी और ना पिजे काश आज दी दुनिया च अजिहा ही प्रेम होवे लेकिन भगत जी ने किसे खास ही वक्त दे विच जदों अजिहे रिलेशन्स हुंदे सन उदों दी यह मिसाल दित्ती है और ना भिजे पग ना खिसे पैर अगां चलदे नहीं हन अते की है हर दर्शन की आसा इत्थे जाके उन्होंने गल कही है हर दर्शन की आसा जेड़ा भगत हुंदा है जेड़ा दास हुंदा है जेड़ा गुरु का सेवक हुंदा है उस दी अंदरली जो अवस्था ए हुंदी है जिस तरह उस कामनी दा जो पति प्रदेश दे विच गया है उस दे राह तकदी है अखियां दे विच हंझू आंदे हन
अंदर होके लेंदी है, दिल किते खलोंदा नहीं है, कदम अगां चलदे नहीं हन। जिस तरह दी कहंदे उस औरत दी जो मानसिक अवस्था हुंदी है, जो गुरु दा दास है, जो गुरु दा भगत है, जो भक्ति अते बंदगी दे मार्ग उत्ते चलदा है, कहंदे हन उस दे अंदर अजिहा विरह जो है वो पैदा हो जांदा है। उस दे अंदरली जो दशा अजिही वैरागमयी हो जांदी है। उस दा अंदर जो है अजिही एक लौंगिंग दे नाल भर जांदा है। और न भिजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा। तो मैं पहले ही अर्ज कीती सी कि अज दे इस कीर्तन दे विच मैं आप दे सामने एक खास किस्म दी मनुखी जीवन दे विच जो अनुभव कीती हुई अवस्था दा जिक्र करना है। असी ये देखना है कि साडी जिंदगी भी की अजिहे अनुभव दे नाल अमीर है या नहीं। डू वी फील दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसिस इन लाइफ और नॉट। साडे जीवन दे विच भी अजिहे प्रेम दे नाल भरे हुए हिरदिया वाले अनुभव वैरागमयी अनुभव हन या नहीं है। अते अगली पंक्ति जो असी अस्थाई दी गाई है मैं फिर तुहाडे सामने गाणी चाहना हाँ। कहिंदे हन उड़हो न कागा कारे। आप सारे जानते हो असी पंजाब चो आए हैं। साडे देश दे विच एक जदों किसे खास अपने मिलन वाले दी पुत्र दी पिता दी माता दी पत्नी दी पति दी भरा दी भैन दी जां रिश्तेदारां दी जिस दे नाल बहुत ही ज्यादा स्नेह होवे उस दी जदों इंतजार हुंदी सी ते साडे ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ

अगर आप सारे मैं पिछले की इतना भी किया है इसमें सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था को उच्चा करने की कोशिश करिए। इन शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ, जिस शीशे दे विच असी अपने आप को देख सकी। मैं आप जी के सामने साढ़े सतगुरुओं की जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड वो रख रहा हाँ, ताकि सानू कुछ ना कुछ से चोट लगे कि असी क्यों जहे हाँ, अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिंदे हाँ उन्हां दे हिरदे किहो जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश कीती है, हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कुछ एक प्रमाण आप जी दे सामने रखण लगा हाँ, अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस किस

गुरु अर्जन देव जी ने अगेन दोबारा उसे ही औरत का प्रमाण दिता है जिसका प्रमाण कबीर साहब ने दिता है। कहते जिस तरह किसी पत्नी का पति बाहर चले गया होवे, अगर वो हार कज्जर वस्त्र अभरण गहने आदि पावे भी ता भी कहते उस दे अंदर की हुंदा है, मोहन नींद ना आवे हावे अते उस दे अंदर हौके हुंदे हन, तो उस दे अंदर की इंतजार हुंदी है, उडीनी यानी उड़ीक, उडीनी उडीनी उडीनी कब घर आवे री, कदों वो प्रभु प्यारा घर आवेगा। ये मिसालां दे के भगत दे गुरु दे सिख दी अंदरली अवस्था नू गुरु साहब ने पेश करन दी कोशिश कीती है। अते गुरु ग्रंथ साहब आप जी ने ये भी पंक्तियां सुनिया ही है ना कि खंभ विकंदड़े जेल हां कि ना सावी तोर तन जराई अपने लहां सो सज्जन तोर। केंदे इंतजार तमन्ना इतनी बद गई है कि अगर किते मैनू खंभ बाजार चो मिल जान ते मैं अपने आपे दी कीमत दे के उन्हां नू खरीद के अपने तन दे नाल जुड़ा के अते उड़ारियां लगा लगा के अगर उसनू मैं लभ सकां तो कहिंदे मैं ए भी करन नू तैयार हां। हम भी कांदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन तोल। तो हुण तक मैं जितनी भी मिसालां आप जी नू दित्तियां हन इन्हां मिसालां दे विच ए पेश कीता है, ए आप जी दे सामने रख्या है कि गुरु साहिब एक खास किस्म दी अवस्था, एक खास किस्म दा ह्यूमन लाइफ दे विच कीता होया एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही पाकशील लोकां ने कीता है उस दे नाल साडे नाल उस नूं साडे नाल जो शेयर कर रहे हैं साडे नाल सांझा कर रहे हैं। हुण जो अगला हिस्सा थोड़ा जिहा आप जी दे सामने मैं रखना चाहना हां

तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। पाप उन्होंने कहने का यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रेम किसी लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की होंगी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लिए एक उपरामता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी को एक जो श्लोक है वह सुनाना चाहना। कहते हैं

ग्यारह श्लोक है। अगर असी ए बाणी मंत्र हन, अज ही मैं सवेरे एक लाइन पढ़ रहा सी, गुरु साहब कहते हैं सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, कहते हैं कि तेरी बाणी ही असल अमृत असल मंत्र है। तो इतने हजूर ये कहते हैं कि बिखियन सियो काहे रचियो निमख ना होए उदास। उदास लफज का जो इस दे पिछे जो कोनोटेशन है उसनों असी थोड़ा ध्यान दे नाल समझिए। असी उदासी तो मतलब समझते हैं डिप्रेशन, गम, जिसनों असी बड़ी नैगेटिव सेंस दे विच लेने। लेकिन गुरबाणी जदों उदास लफ्ज आता है तो इसके जो भाव हैं इसके अर्थ हैं वो टोटली अलग हैं। हुण असी उदास लफ्ज नूं किस तरह समझिए। एक है जो साड़ी जिंदगी दे विच डिप्रेशन आता है, असी बड़े अंदरों एंगजाइटी दे नाल फ्रस्ट्रेशन दे नाल जदों कमजोर हो जाने हाँ उदों भी साड़ी जिंदगी च उदासी आती है। लेकिन गुरबाणी उस उदासी की गल नहीं करती। गुरबाणी किस उदासी की गल करती है उसनों असी इस तरह समझिए कि जदों जिस चीज दे विच साड़ी रुचि होवे वह सानू ना मिले तो फिर की होंदा है, साडे अंदर एक तोटा एक काज एक थुड़ महसूस होंदी है। अते जिस चीज दे वास्ते साड़ी रुचि होवे अगर वह सानू मिल जाए तो सानू एक खिड़ाव महसूस होंदा है, एक ताजगी मिलती है। गुरु साहब उदासी की गल जो करते हैं तो भगत की जिंदगी की एक उदाहरण लैके गल करते हैं कि भगत की जिंदगी दे विच रब दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल प्यार हुंदा है, उस दी रूह की खुराक सत्संग हुंदा है, उस दी आत्मा की भुख पूरी हुंदी है जदों उसनू गुरबाणी गुरबाणी पढ़ने वाले की संगत गुरबाणी दे विचार अते साध संगत का माहौल मिले। जदों उसनू ये नहीं मिलता तो उस दे जीवन दे विच एक उदासी आती है, एक उपरांता आती है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं इंसान तुसी हमेशा इन चीजा के ही उलझे रेंदे हो, फसे रेंदे हो, खोए रेंदे हो, तुसी इना दे विचों कदे उपराम ही नहीं होंगे। भाव के तुसी कदे आखते ही नहीं हो, कदे रचते ही नहीं हो, तुहाडी रुचि जो है इन चीजा के विचों कदे निकलती ही नहीं है। कहते हैं बिखियन सिउ काहे रचियो निमख ना होए उदास। कहते हैं निमख भरते वास्ते भी पल भरते वास्ते भी तुम इन्हों छड़ना नहीं चाह रहे, इतनी ज्यादा इन्होंने जिंदगी उलझ चुकी है। निमख ना होए उदास कौ नानक हर भजमना परे ना जमकी फास। लेकिन जदों गुरु साहब साड़ी जिंदगी का मुआयना करते हैं, साड़ी जिंदगी का जदों एनालिसिस करते हैं तो उन्होंने साडे मुतलक अजिहे बाणी च शब्द कहे हैं, मैं आप जी के सामने सुनाना। कहते हैं काम क्रोध बिख भूख प्यासा आ साडे पले, काम क्रोध बिख भूख प्यासा जो दिसे सो आस निराशा नानक बिरले मिले उदासा। कहते हैं बिरले ही ऐसे सज्जन कोई मिलते हैं जिन्हों के चित उदास हैं, पाप जिन्हों के चित इन तमाम दुनिया के झमेलिया तो उच्चे उठ के कुछ होर लभते हैं। कहते हैं अजिहे सज्जन बहुत बिरले ही मिलते हैं। कबीर साहब उदास हैं, मैं पिछले कीर्तन के एक प्रमाण दिता सी, असी उदास नहीं हैं। उदास का भाव जदों इन चीजों च चित ना लगे, जदों आत्मा कुछ होर चाहे, जदों अंदर कुछ होर लगता होवे, जदों खाने च भी रूह ना रह जाए, पहनन च भी रूह ना रह जाए, दुनियावी मल्ला मारन च भी रूह ना रह जाए, जदों चित कुछ होर लभे उसनू कहिंदे हन उदासी। साडी अवस्था जिही नहीं है, कबीर साहब भी है। कबीर साहब कहिंदे

मैं इस सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस दे विचों कोई सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई काम वाली शायद नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी, केस जरे जो काश, ये जग जरता देख के कहो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित कदे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लभदा, तेरा चित कदे अजिही चीज नहीं लभदा जिहड़ी कि हमेशा ही कायम रहे, ना कि तू उन्हां चीजां नूं लभदा रहना है जिहड़ियां ने बिनसी जाना है। तो सतसंग जी अज दी सारी विचार दे विच जो सानू सुनेहा मिल रहा है, जो सानू उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान दे पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार नू कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआं दी नजर दे विच वो इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, वो इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इना तमाम दुनिया के खाणियां दे नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असी यह सुनदिया सुनदिया अंदर यह देखना है कि साडी रुचि बदली है या नहीं बदली। असी अपने आप से सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असी जिंदगी च की लभदे हैं, किस किस्म की साडी रुचि है, अते जिस किस्म की रुचि हुंदी है उसे किस्म का इंसान हुंदा है। आ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक, इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक के द्वारा उसनू सुनो।

सब संग चरण चलो मार्ग गोविंद मिले पाप जपिए हर बिंद।

कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे हों तुमरी करो नित आस प्रभ मुए कब गल लावेंगे कदों वो दिन आएगा जदो तू मैनु अपने गले लावेंगा गुरु दे गले लगी है सारा शरीर पवित्र हो जांदा है ते जे गुरु ग्रंथ साहब जी दे गले लगी है तन भी पवित्र ते मन भी पवित्र एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम।

प्रेम सहित गल लावे। छोटी उम्र दा कोई 10 साल दा ये बच्चा पता नहीं कौन सी जो इस दे नाल नाल अज गाउंदा आ रहा है। प्रेम सहित गल लावे।

मां ने उठ के दरवाजा खोलिया, सदके हां मैं तेरे राह तो, सदके हां मैं तेरे कदमां तो, अज मेरे घर मेरी गरीबणी दे घर किवें आना हो गया। कहन लगा मां तैनू खुशी होएगी, कल संगतां जा रही ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दर्शन करन वास्ते, श्री आनंदपुर साहब जाना है, इत्थों बहुत सारियां संगतां जा रही ने, मां जे तू जाना होवे तां तैयारी कर ले। मां कहण लगी बेटा मैं चली तां जावां पर मेरे कोल तां बेटा ही कोई नहीं रखण वास्ते, जिहड़ी गुरु दे चरणां विच जाके रखणी है। लोग तां बेटा लैके जाणगे, लोकां ने तां सुखणा सुखी होईआं ने, उन्हां ने तां साल दा दसवंध इकट्ठा कीता होया, पर मेरे घर तां एक दिन रोटी पकदी है दूजे दिन नहीं पकदी। बच्चा झोली चो उठिया ते कहण लगा मां मैनू हुण चेते आ गया, जदों मैं खेल रहा सी उदों मेरे कान च एक आवाज पई सी, कोई कह रहा सी कि जिहड़ा प्रेम सहित गल लावे वह आनंदपुर रहिंदा, ते मैं ये भी सुनिया कि जिसनू पिता का प्यार ना मिले वह उहदा प्यार ले लवे। मां मैं उहदे गले लगना, मां दे अखां च हंजू किर आए। मां कहण लगी पुत्र मैं बिरध हां, मैं जा नहीं सकदी, ते जे तैनू मैं भेजा ते किस दे सहारे ते भेजा। बच्चा कहण लगा मां मेरे नाल दे भी साथी जा रहे ने, ते मां कहण लगी किसे दा पिता होएगा नाल, किसे दी मां होएगी, तू तां कल्ला होएगा, तैनूं कौन संभालेगा, जे तैनूं रस्ते विच नींद आ गई ते तैनूं कौन उठाएगा, क्योंकि तेरा तां कोई होना नहीं। आखर बच्चा कहण लगा मैं ते जावां, मैं ते जाणा है, सिर्फ मैं उहदे गले नाल लग के देखना है। इहो ही मेरे कन्नां विच आवाज गूंज रही है, प्रेम सहित गल लावे। रात पै गई, रात दे 12 बजे ते अख खुल गई, उठ के बह गया, कहण लगा मां ओ जांदे ही गल ना ला लवेगा, ओनू की पता लगेगा मैं कौन हां। ते मां कहण लगी बेटा

सिख उसे नु कहा जा सकता है जेड़ा गुरु दी विचारधारा अनुसार चल रहा है। जो गुर कहे सोई पल मानी, जिवें गुरु दा हुक्म हुंदा है अपना जीवन उसे तरह बतीत करे ते उसनु गुरसिख आखदे ने, क्योंकि सतगुरु ने सब तो पहले सिख सजाया है। जब तक गुरसिख दा जीवन गुरु दे कहे मुताबिक इस बचना मुताबिक नहीं बनता, उसनु सिख किवें आख्या जा सकता है। भाई साहब दूसरी पौड़ी अंदर कहिंदे ने गुरसिख दा दूसरा नियम की है।

ऐसा गुरसिख मिल जाए ओदे मिलिया पाप पुनिठ दा भाव है पापा दा भी नाश हो जांदा है। भाई साहब कहंदे ने गुरसिख दा जीवन ऐसा होवे ते मैं उस

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे से दुख फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, किथे ने, किथे ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंडवाल लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: ये सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पे सन।
1: तुसी टाणी फड़ के पानी कैसे ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखा नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार श्वेत सपना साकार कर देता। तेरी लीला परम्पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,